0: We now offer you a recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib. One of the profound messages of this holy scripture is the unity and equality of humanity. As one verse states, "Look upon all with equality, and recognize the Supreme Soul, the Lord, pervading among all."
1: तन आसरी तन मंती जानिया पाई जा सतगुरु की कार कमाए तन मन सौपे जी सौ पाई लय हुकुम फिराओ जय बैसा मैं बैसे पाई जय भेजे तै जाओ एवड तन होर को नहीं पाई जेवड़ सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा पाई सदा सच्चे कै संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया पाई अपनी पत के साध आपे खाए तिसका क्या साला ही है पाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वड़िया वड़ियाईया पाई कर्म मिलैता पाए एक हुक्म मानना जाननी पाई दूजे पाए फिर आए संगत टोई ना मिले पाई बैसन मिले ना था की कार कमाए तन मन सौपे जी सौ पाई लय हुक्म फिर आओ जय बैसा मैं बैसे पाई जय भेजे तै जा।